0: Hey yo, what up? This Vicious, and you're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation. Hot Scott.
1: Well, I finally improved my credit score.
2: What? The band is about to be discovered. Rock gods don't need to worry about credit scores. We're supposed to think about how many guitars we've smashed, make ridiculous on-tour requests, tragically break up and blame creative differences.
1: Yeah, I'm not banking my retirement on a band that's never left your garage.
3: When it comes to financial stability, don't get left behind. Get tools and tips for saving at feedthepig.org. This message brought to you by the American Institute of CPAs and the Ad Council.
4: It's time to join your college newspaper, Pandora's Box. Are you a good storyteller? Do you like writing? Are you a curious person? Then come write with us at Pandora's Box. It's your college paper. We encourage all majors to join. There are positions for graphic editors and business managers. Our work at PB tells the stories of York and the surrounding Jamaica community. The newspaper is a platform for all students, faculty, and local voices to learn and practice the art of news gathering. PB staff are the watchdogs for the Jamaica community and give a voice to the college's student body. Get experience for life in the real world. Report and write with us.
5: York College ke chhatron, dhyan de. शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
6: Kids today live in a world full of social pressure, bullying and substance abuse. LEAD has a solution. LEAD connects law enforcement agencies with schools to deliver tested, proven, and effective anti-drugs and violence training to kids. Learn more about LEAD, Law Enforcement Against Drugs and Violence, and our work to create safer, healthier communities at leadrugs.org or on social media at WeAreLEAD. Sponsored by LEAD, Inc.
7: What's up, world? It's King Hearts. This is YCRadio.org, the voice of today's generation. Y'all already know what it is.
8: Go buy a zip, hit the club, pay for about 10, get in, we crunk, lit, in it. Yeah.
9: No, we walk around the world, stepping out, giving a damn by where our feet lined at. Yeah. Get y'all mushed, smushed. Yeah, 21, the biggest.

0: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दें। शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意。 2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP

0: My name is Bio Fiammi, New York City guitarist and president of the York College Music Club, and you are listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: York College has a message for you.
2: The York College Testing Center now administers the TOEFL exam for proficiency in the English language.
1: And if you want to get out of college faster, try CLEP. CLEP was developed by the College Board and has been the most trusted credit exam for over 40 years.
2: Yes, you heard that right. York Testing Center offers it all. We are located in the AC building, 94-20 Guy R. Brewer Boulevard, Jamaica, New York, room number 1G05. Call us at 718-262-2010. Once again, that address and phone number is 94-20 Guy R. Brewer Boulevard, Jamaica, New York, room number 1G05. Call us at 718-262-2010.
3: Hi, I'm Kenny Williams.
4: And Lisa Ray.
3: We'll be hosting a show called Laugh Therapy, a show focusing on the healing power of comedy, using anecdotes, discussions, and interviews. We'll show you how laughter is the medicine for the soul. Tune into YCRadio.org every Wednesday at 2 p.m. with your host, me, Kenny Williams.
4: And Lisa Ray.
3: Make sure you listen in on a free TuneIn app on any mobile device or YCRadio.org. The voice of today's generation.
5: 'Cause I ain't no joke.
1: York College के छात्रों ध्यान दें। शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और York College की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो York College की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या York College स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
6: Don't let debt keep you down. Protect your career, your family, and your financial future with help from NFCC, a financial advocate who understands the money issues faced by current and former military members. Schedule a confidential financial review with an objective nonprofit NFCC financial counselor. Call us today at 877-404-6322 or visit us at nfcc.org/military. You owe it to yourself. Get relief now.
7: What up, what up? It's the Kid Out of War from BYBNYC. You listen to YCRadio.org, the voice of today's generation.

0: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。

0: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दें। शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意。 2026至2027 学年的FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助， 约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。 欢迎前往 EH04办公室获取快速帮助，或参加FAFSA申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响，立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
2: My name is Lisi Augustine, Computer Science major. This is YCRadio.org, the voice of today's generation.
3: Nosotros compartimos un mismo deseo. Quisimos servir a nuestro país y proteger lo que amamos. Estuvimos listos para enfrentar cualquier misión, pero para algunos de nosotros, regresar a casa era un desafío más grande de lo que esperábamos. En el ejército contábamos con el apoyo de nuestros compañeros, pero como veteranos nos sentimos como si estuviéramos solos.
4: Para ayuda confidencial llame 1-800-273-8255 y empuje 1. Charla con alguien en veteranscrisisline.net o mande un texto a 838-255.
5: Your college is looking for a DJ. No radio station is complete without DJ, and that could be you. Come talk to us in room 1G06G. Email us at bgraves@york.cuny.edu. Call us at 718-262-5293 or visit our website, ycradio.org. Once again, email us at bgraves@york.cuny.edu. Call us at 718-262-5293 or visit our website, ycradio.org. We'll be looking forward to meeting you. ycradio.org, the voice of today's generation.
6: Behind every meal are the efforts of our farmers and farm workers, whose work feeds our families and powers our communities. For more than 30 years, AgSafe has supported this industry with the knowledge and resources needed to keep workers safe and thriving. We partner with agricultural employers to strengthen safety practices and provide hands-on training. Safety isn't paperwork. It's people, community, and peace of mind. Learn more about our work at agsafe.org. Sponsored by agsafe.org.
7: Yo, what's good? This is Mark Taylor at Official Mark Taylor on IG. You are now listening to ycradio.org, the voice of today's generation.
8: What's up, world? It's King Hearts. You are listening to ycradio.org, the voice of today's generation.
9: up. Hey!

0: Media Summer Camp.
1: Life is full of bittersweet transitions. It's difficult to know how these changes will impact us over time. For some people, difficult transitions like retirement, divorce, or loss of a loved one can hit harder than expected and may contribute to feelings of hopelessness or even thoughts of suicide. The risk of suicide is even higher for men over 50 who served our country. Guys like me. That's why support from friends and family makes such a big difference. Every day, your actions could help save a life. Together, we got this. Learn how you can help save a life at veteranscrisisline.net.
2: York College ke chhatron, dhyan de. शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
3: This is YC Radio's DJ Extra Small. Are you tired of going on the York College website to listen to YC Radio?
4: Well,
3: now you don't have to. Listen to YC Radio on TuneIn Radio. Download it off Google Play or the App Store right now. YC Radio, the voice of today's generation.
5: This is the news. This morning, we are saluting the 2.2 million women who have joined in the war effort. They now make up 37% of the workforce, changing their role forever.
6: The prestigious Harvard Medical School is breaking ground today, opening its doors to new female applicants.
7: Today, little girls all over the world look to the sky, where the first woman is now in space.
8: Military stereotypes are challenged today with the trailblazing promotion of a U.S. female officer to four-star general. It was just announced that the vast majority of last year's doctorate degrees were earned by women.
9: We've come so far, but our news is changing for the worse. More women die from heart disease and stroke than men, even though it can be prevented. Make a change at GoRedForWomen.org today. Brought to you by the Ad Council and the American Heart Association's Go Red for Women.
10: 约克学院的同学们，请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程，不要等到最后一刻。尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。 立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026-2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
0: Hi, this is the Bobcat on YCRadio.org, the voice of today's generation.

0: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दें। शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。

0: falling, yeah.
1: This is YCRadio.org, the voice of today's generation.
2: I'm so glad we left that stupid party.
3: No joke.
4: Hey, baby, are you an overdue library book? Because you got fine written all over you.
2: Ugh, barf.
3: What about that girl with the hoop earrings?
2: Ridiculous. When she was dancing...
3: Megan, look out! Look out!
2: Oh my God, Becky. Becky, are you okay?
5: My arm. I think it's broken.
2: Can you bend it?
5: It's already bent. In the wrong direction.
2: I can't believe this. I'm so sorry. I only had a few drinks. I was just buzzed.
3: Really? Just buzzed?
2: Yeah, I swear.
3: Well, in that case,
2: my arm is fine.
3: Ah, that's better.
2: You're really okay? You're serious, Becky?
3: No, genius. I'm not serious.
2: My arm, it hurts.
6: Buzzed driving. Maybe we should stop acting like it's no big deal. Buzzed driving is drunk driving. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Transportation, the Ad Council, and this station.
7: Your college ke chhatron, dhyan de. Shaikshanik varsh 2026 se 2027 ke liye FAFSA, FAFSA, aur TAP, TAP, aavedan ab khule hain. और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं, जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
8: Hi, my name is Larry Eaton, and I'm hosting a new show called Fireside Chats with Mr. Eaton. The show will be dealing with issues surrounding veterans, but also for all students and their educational endeavors. Please tune in to YCRadio.org. Every second and fourth Tuesday of the month. I look forward to speaking to you all on YCRadio.org, the voice of today's generation.
9: This is Nnamdi Asamoah. I play football for the Philadelphia Eagles, but what I do off the field with United Way might be more important. I'm a volunteer tutor and mentor. Why? Because over a million kids a year drop out of school, and that's not okay. It takes 12 years to create a graduate, but it takes about the same time to create a dropout. And the difference between a child becoming one or the other could be me, or it could be you. Studies show that if we get to these kids earlier, their chances are better, and kids who read well by third grade are more likely to graduate. So join me in United Way. Suit up and take the pledge. Become a volunteer reader, tutor, or mentor, because when a child succeeds, we all succeed. Give, advocate, volunteer. Live United. Take the pledge at UnitedWay.org. Brought to you by United Way, the Ad Council, and the National Football League.
10: 约克学院的同学们，请注意 ，2026 至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。 不要等到最后一刻。尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026-2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
0: This is your boy Jay Wright. You are listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
11: Nobody pray for me. It been a day for me.

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
2: You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
3: Did you just look down at your phone? You did it again, didn't you? You know, you're flying down the road in a 3-ton hunk of steel.And a text takes your eyes off the road for an average of 5 seconds? At 55 miles per hour, that's long enough to travel the length of a football field and cause some serious damage. Turn it off. Trust me. Whatever it is, you'll live.
4: Learn more at StopTextStopWrecks.org. Brought to you by the Ad Council and the National Highway Traffic Safety Administration.
5: Interested in radio broadcasting?Volunteer to be a staff member and learn what goes on behind the scenes at your college radio station. Moreover, bring your ideas and passion, joining a team of your peers in the capacity of on-air announcer, programming, marketing, news, sports and entertainment, visual arts and web design, and of course, music. Whether you are seeking to be an engineer, producer, or one day have a promising career in the media communications industry,Volunteering as a staff member at YC Radio is a great way to gain real work experience to your resume. For more information, call 718-262-5293 or visit YC Radio Station, room 1G06G. Again, for more information, call 718-262-5293 or visit YC Radio Station, room 1G06G.
6: At Inform Your Community, we combine topics that people want more information about with fun events like crafting, movies, and games, which cover information on a range of topics that impact what happens in the United States. Now we're taking our nonpartisan virtual events and launching in-person chapters around the country. Get informed and have fun while you're at it. Let's grow together. Sponsored by Inform Your Community, a nonpartisan nonprofit. Come visit us at informyourcommunity.org.
7: Yo, what's good? It's your boy, Ray DeJean. This is YCRadio.org, the voice of today's generation.
8: Yeah! Yeah.

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。

0: Hi, my name is Anika. Tune in on ycradio.org, the voice of today's generation.
1: Getting your child home safely.
2: Tap your views together three times.
1: Is just a click away.
3: There's no place like home.
1: But making sure your child is in the right seat is just one of the steps down the road to safer travels.
4: I don't know how it works.
1: Find the right seat for your little one's age and size. There's no better way to get home safely. Know for sure that your child is in the right seat.
5: How can I ever thank you enough?
1: Get all the facts at safercar.gov/the right seat. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
6: Want more students to know about your department and what it has to offer? YC Radio has an easy solution. Promote your departments on our station. All departments from your School of Arts and Sciences, School of Business and Information Systems, and School of Health Sciences are welcome. A biology student says,
7: it'll be beneficial for incoming freshmen who aren't sure which major to choose.
6: For more information, contact Brian Graves at 718-262-5293. Once more, 718-262-5293. Or email him at bgraves@york.cuny.edu. Once again, the email is bgraves@york.cuny.edu. This is ycradio.org, the voice of today's generation.
8: This moment of uncontrollable laughter was made possible by a 32-year-old man with little to no coordination attempting to execute a simple cartwheel. His name is Sergeant Warner, but young James, our laughing friend here, simply calls him Dad. The smallest moments can have the biggest impact on a child's life. Take time to be a dad today. Call 877-4DAD-411 or visit fatherhood.gov. Brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services and the Ad Council.
9: Your college ke chhatron, dhyan de. Shaikshanik varsh 2026 se 2027 ke liye FAFSA, FAFSA aur TAP, TAP aavedan ab khule hain. और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं, जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
10: आप सुन रहे हैं ycradio.org। यह है आज के समय का शब्द।

0: 约克学院的同学们，请注意2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
1: Your college के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
2: So, who's going to do what? Flashlights?
3: Nowhere to be found.
2: Emergency supply kits?
3: Not packed.
2: What about blankets?
4: We have an old towel.
2: Cell phones?
3: May not work.
2: Emergency water?
3: Not a drop.
2: Perfect. We all know where we're meeting if we're separated.
4: The library.
3: On Jones' house.
5: The bus stop.
2: And I'll be waiting here wondering where you all are. Great. It sounds like we don't have a plan.
6: Winging It is not an emergency plan. Make sure your kids know what to do during an emergency, who to call, where to meet, what to pack. Visit ready.gov/kids for tips and information. Brought to you by FEMA and the Ad Council.
7: Hey, York College students, log on to your Cardinal app. Hit the link and tune in to ycradio.org. My name is Lisa Ray, and you're listening to ycradio.org, the voice of today's generation.
8: Hey, Lisa, how are you? It's been so long. Are you back for good? What's going on?
9: Hey, good to see you. Yes, I'm back for good, and just trying to get my life back together.
8: Well, I'm so happy that you're home. It looks like things are going well. I've been seeing those pics you post of you and your family at all those fun events. What gives?
9: Oh, VetTix. VetTix gives.
8: What's VetTix?
9: VetTix is an amazing charity that gives free event tickets, like concerts, sporting events, and shows, to currently serving military vets and their families, and to the immediate families of troops killed in action. It's a really nice organization.
8: That is so nice.
9: These events have helped me feel like myself again, and all these new happy memories my family and I are making are priceless.
8: We have extra tickets sometimes. Can I donate them?
9: Yes, it's easy. Just go to vettix.org. You can give your extra tickets, and other vets like me can sign up to get them.
8: Awesome. I love that idea. What a great way to give back. I'm so glad you told me about it, and it was amazing to see you. And listen, thank you for your service.
10: You are listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
11: She knew like

0: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: Hi, my name is Eric Ortiz, Vice President of Pi Eta Kappa, and you're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
2: If there was ever a time to live united, it is now. Now is the time to speak with one voice, to build up, not tear down. It's time to join hands and live united against the problems that keep our communities from thriving. United Way fights for the health, education, and financial stability of every person in every community. Will you volunteer or donate now at unitedway.org?
3: Are you interested in radio broadcasting? Volunteer to be a staff member and learn what goes on behind the scenes at York College radio station. Bring your ideas and passion, joining a team of your peers in the capacity of on-air announcer, programming, marketing, news, sports, entertainment, visual arts, web design, and of course, music. Whether you are seeking to be an engineer, producer, or wish to have a promising career in the media and communications industry, volunteering as a staff member at YC Radio is a great way to add real work experience to your resume. Come to room 1G06G or call 718-262-5293. That's room 1G06G, 718-262-5293.
4: 约克学院的同学们请注意 ,2026 至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程，不要等到最后一刻。尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
5: We are the CUNY Creative Arts Team Project Change. This is the moment of truth. It's our anniversary. What's up, girl? How are you?
6: Nothing much. Just getting ready for tomorrow. You know, it's me and my boo's 3-month anniversary.
5: That's right. Your 3-month anniversary is tomorrow. I'm not saying anything is going to happen, but just in case, here's a few condoms.
6: Whoa, girl, what's this?
5: I don't need these.
6: I'm already on birth control pills, honey. We established trust in our relationship. I love him, and I know he feels the same way.
7: I'm glad y'all trust each other and everything after those long 3 months and all. But it's not about getting pregnant. Birth control pills cannot protect you from HIV and STIs, so you do need these.
6: Oh, please. What is this? But what if he thinks I don't trust him because I want him to use a condom? What if it messes up our anniversary, our relationship?
7: I mean, well, y'all been together for this long. If the trust is really there like you say it is, then he should understand and respect your choice.
5: Unintended pregnancy is one issue, but having an STI or being HIV positive can attribute to long-term physiological and emotional effects if left undiagnosed or untreated. Safe sex is the best sex. Use condoms. It only takes 2 cents to change. Brought to you by Project Change.

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: You're listening to YC Radio and I'm Guru Chris. What up?
2: My grades were bad. I would like get D's and C's.
3: I appeared to be doing good at my school life, but if you would see me at home, it would have been a completely different story.
4: I mean, it was just rough focusing on school when your mother is somebody you have to take care of.
5: It got worse and worse and worse throughout the years.
6: There are students who need somebody.
7: They can trust someone, and it could be the first person they've ever trusted in their life.
8: Communities and Schools is lowering America's dropout rate by helping more than 1.3 million kids every year get whatever they need to succeed in school.
9: If something was going on at home, we would go just stop by Miss Liberty's office and talk to her.
3: Communities and Schools vouched for me when everyone else had lost hope.
8: You can help change the picture of education right here in your community and across the nation. Visit communitiesandschools.org.
7: I hear people say we can't save every kid, but I think that we can.
10: 约克学院的同学们请注意 ,2026 至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
11: It's time to join your college newspaper, Pandora's Box. Are you a good storyteller? Do you like writing? Are you a curious person? Then come write with us at Pandora's Box.It's your college paper. We encourage all majors to join. There are positions for graphic editors and business managers. Our work at PB tells the stories of York and the surrounding Jamaica community. The newspaper is a platform for all students, faculty, and local voices to learn and practice the art of news gathering. PB staff are the watchdogs for the Jamaica community and give a voice to the college's student body. Get experience for life in the real world. Report and write with us.
12: If you're looking to gain legal status in the U.S., a word of caution. Beware of unqualified notarios who want to fill out your papers. They could ruin your chances for legal status forever. Instead, talk to a licensed immigration practitioner, ask questions, and report notarios who are trying to take advantage of you or your family. For more information, go to www.stopnotariofraud.org.
13: What's up, everybody? It's your girl, K Goddess, and this is YCRadio.org, the voice of today's generation.

0: Hey, what's up? This is RJ Bagger, and make sure you tune in on ycradio.org, the voice of today's generation.
1: Hi, this is Jennifer Coolidge. The American Heart Association says the disco song Stayin' Alive is the near-perfect beat for hands-only CPR. If you see a teen or adult collapse from cardiac arrest, you only need 2 steps to help save a life. Call 911 and push hard and fast in the center of the chest to the beat of the song Stayin' Alive. Disco is back and it's saving lives. To learn more, go to heart.org/hands-only-CPR.
2: Nationally supported by the WellPoint Foundation.
3: YC Radio has time slots available for current college students, faculty, and staff who want to host their own radio show. You've probably just asked yourself, what kind of show could I do? Well, let me ask you, what are you passionate about? Is it reading, cooking, music? How about health and wellness? Or maybe you enjoy learning and talking about history, current events, interview others in their related fields. This is only for current college students, faculty, and staff. Host the show at your college radio station and be a part of our community. So what do you say? I say call Brian Graves, 718-262-5293. Be the producer. Host your own radio program, 718-262-5293. Or go online and fill out an application. Be a voice for this generation. YCRadio.org, the voice of today's generation.
4: Hablar con veteranos acerca de las situaciones o los problemas en que están puede ser difícil e incómodo, pero cuando su comportamiento cambia, es el momento de actuar, porque si no lo hacemos, nuestras familias y amistades van a sufrir. Escuche a los veteranos en su vida y demuestre que le interesa. Esto es importante. Cuando usted vea que un veterano está en crisis, llame a la línea de crisis para veteranos al 1-800-273-8255 y presione 1. Para chatear en línea, visite veteranscrisisline.net.
5: Yo, college ke chhatro, dhyan de. Shaikshanik varsh 2026 se 2027 ke liye FAFSA, FAFSA aur TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
6: Yeah, this is Master the Savage, and you're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation. Yeah.

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: What's good, y'all? It's your girl, K Goddess, and you are now listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: Confessions of a Potentially Perfect Parent, brought to you by AdoptUsKids.org.
2: Okay, here goes. I know more about cooking dinner for a party of 12 than I do about packing a lunch for a 12-year-old. I know kids like things like PB&J, pigs in a blanket. Oh, and fish sticks. They do love fish sticks. Fillets I get, but sticks? What part of the fish does the stick come from? I know I can read a cookbook that'll tell me how to make a red wine reduction, but where are the cookbooks that can teach me how to cut the crusts off bologna sandwiches? Oh, maybe we can compromise on mac and cheese. Can you make that with brie? Everybody likes brie, right?
1: You don't have to be perfect to be a perfect parent. There are thousands of teens in foster care who would love to push your food around their plate. Call 1-888-200-4005 or visit AdoptUsKids.org for more information. This message brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services, Adopt Us Kids, and the Ad Council.
3: Your college ke chhatron, dhyan de. Shaikshanik varsh 2026 se 2027 ke liye FAFSA, FAFSA aur TAP, TAP aavedan ab khule hain aur ab apna aavedan pura karne ka sahi samay hai. जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता. अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें. यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है. त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी. अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें. जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है. आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं. अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें. आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें.
4: Interested in radio broadcasting? Volunteer to be a staff member and learn what goes on behind the scenes at your college radio station. Moreover, bring your ideas and passion, joining a team of your peers in the capacity of on-air announcer, programming, marketing, news, sports and entertainment, visual arts and web design, and of course, music. Whether you are seeking to be an engineer, producer, or one day have a promising career in the media communications industry, volunteering as a staff member at YC Radio is a great way to gain real work experience to your resume. For more information, call 718-262-5293 or visit YC Radio Station, room 1G06G. Again, for more information, call 718-262-5293 or visit YC Radio Station, room 1G06G.
5: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码。 或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026-2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
6: Tengo más recursos de los que creo. Mi traje todavía puede dar una buena impresión.
7: Y mi bicicleta podría ayudar a otros a encontrar un camino.
8: Porque cuando dono mis cosas a Goodwill, las ventas ayudan a financiar programas de entrenamiento para nuevos empleos en mi comunidad.
6: Ahora mis cosas tienen una segunda oportunidad.
8: Y también le darán una segunda oportunidad
7: a alguien en mi comunidad.
9: Goodwill. Dona cosas, crea trabajos. Busca tu centro de donaciones más cercano en goodwill.org. Un mensaje de Goodwill y el Ad Council.
10: You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.

योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: Key. Bangers in the system, miss that. Bangers in the system, miss that.
1: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
2: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持，欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座，我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
3: Rap to you real quick. I want to enjoy the luxury of like not knowing each other for real. Hold up.

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।